0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं।

0: इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F-17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. EOS-05 is a state-of-the-art Earth observation satellite and India's first imaging satellite from geosynchronous orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared, multispectral and hyperspectral bands. The satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. ISRO Chairman V. Narayanan said, "The mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services." Government has constituted a 31-member Joint Committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the FCRA Amendment Bill. Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartruhari Mahtab, Tejasvi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harshvardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy have been included in the committee. Both houses of parliament on 12th August.

0: దీక్షవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 12 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే విశాల్ శర్మ. ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया. सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है. इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा. भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है. श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है. इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा.
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है. हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग

0: करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सखियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के आए हैं, शाहजहानपुर पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप?
1: जी जी
0: जी। बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भाई बात सभी भाई तो पहुँच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों की राखी बन जाती है, रिचना हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं यहाँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे हैं आपके जीवन में। अभी खुशियों के दिन आ रहे हैं जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना। अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर है हम
0: जी,
1: और मेरी ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे
0: जी। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी चंदा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बड़ौदा से शारदा बेन नागरेचा ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: बहुत सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है। रसोई का और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ।
0: अरे वाह,
1: तेज पत्ते में से, पिस्ता में से,
0: यानी
1: आचार के गुंदे आते है ना, गुंदा अथाना, वो भी ईसा वाला त्रोफान, लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ईसा
0: जी,
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर करते है।
0: वाह वाह वाह, यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप फेंकती
1: हाँ।
0: नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: और होटल मैडम राखी आते हैं, राखी के सब सामान में रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि जिन चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: गाना गाना भजन कीर्तन सब आता है मैडम
0: जी, तो कुछ गाकर सुनाइए।

0: રાખી ફોરે, ગોપીઓના ઘરમાં જઈને લીલાયો કરે શ્યામ, આવીને મારી મઠુકી ફોરે.
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना वो भी करते रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए. चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं.
0: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है,
1: बहुत सुंदर.

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ
0: जी।
1: तीन बच्चे हैं मेरे, दो बेटी है एक बेटा है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है, जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा, नाश्ते में और जूस वगैरह।
0: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, खास करके मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ जी। मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, ऐसा होता है ना कि सावन भादो का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में
0: जी,
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
0: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
1: जी जी हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है। चीनी कम, गुड़ और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
0: जी।
1: जी जो गन्ने का रस जो निकलता है ना तो पहले मीठा बनता है, उसके बाद गुड़ बनता है। तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा
0: जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ये छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
0: जी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से।
0: जी रुचि जी, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी, यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खाने पान में स्वाद है।
0: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
0: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, कि जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई, तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं। शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
1: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
0: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं।

0: फेंकना है उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने
0: जी। बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आ जा।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है, अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
0: क्या बात है, और आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए मैडम।
0: नहीं, नहीं। और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ सुनाइए आप।
1: 13

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत
1: जो याद आ गया वो गा दिया मैडम कोई पहले से तैयारी नहीं थी
0: नहीं नहीं बहुत सुंदर आपकी आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप और जैसे आपने कहा कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं तो किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं कुछ
1: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ ताकि वो थोड़ा कम जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ अक्सर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए वो संभव नहीं है धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है आजकल क्या हो गया ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे कुछ चीजें तो जैसे बोलते हैं ना इनहेरेंट होती हैं आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए तभी वो उभर के बाहर आ सकता है
0: और आप रियाज के माध्यम से अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं
1: जी जी जी
0: ये आपने बहुत सही बात कही है ये एक संदेश है और संगीत को लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी
1: हाँ यही देना चाहूंगी मैं क्योंकि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि तो उसे ड्राइंग करवाइए उसे अगर किसी संगीत में रुचि तो कराइए या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि है तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती है
0: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए
1: हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है तो दौड़ में हम ना दौड़े और वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य साधना ईश्वर कृपा ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है ऐसा मुझे लगता है
0: जी बहुत अच्छा संदेश आपने दिया और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं
1: बंदिनी का अब के बरस भेजो भैया को बाबुल अभी सावन भी है
0: जी
1: और बहुत ही प्यारा आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत तो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: आलिया भानो बात कर रही हूँ, बड़ोदरा गुजरात से।
0: जी आलिया जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैडम मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे ही रहती हूँ। आप सोनाली पाठक बोल रही है ना?
0: जी हाँ, मैं सोनाली बात कर रही हूँ।
1: मुझे आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा।
0: जी हाँ,
1: खुशी हो रही है।
0: जी हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियाँ क्या है आपकी, कौन से शौक है आपके?
1: मुझे रेडियो सुनने का बहुत अच्छा लगता है, गाने सुनने का।
0: जी
1: और मुझे ना सैटरडे के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: एक रिश्ता फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। और दीदी, मुझे पूजा दीदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है।
0: जी
1: सलमा दीदी की आवाज भी।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: साइबर रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबर रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया।
0: जी साइबर रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ।
0: क्या पढ़ रही हैं आप?
1: बीए कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स हैं कि बीए के बाद में क्या करना चाहती हैं?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ।
0: टीचर बनना चाहती हैं?
1: जी मैम।
0: जी तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, देखिए आप टीचर बनना चाहती हैं तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने।
0: जी तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: सिस्टम फिल्म मूवी का पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: उज्जैन से अनिता जोशी ने।
0: अनिता जी, क्या हालचाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का बाबा कृपा है
0: जी। बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
0: जी। अच्छा, अपने शहर के बारे में बताइए
1: जी। हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी यहाँ पे, सांदीपनी आश्रम है उनका
0: जी।
1: महाकाल का मंदिर भी है, बारह ज्योतिर्लिंग में आता है वो।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का, यशोदा का नंदलाला
0: जी। संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुवाना भानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से।
0: जी बताइए आप क्या करती हैं?
1: बेटा मैं घर भी रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ कपड़ों में, कपड़े में सिलती हूँ मैडम।
0: जी यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है।
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: मैडम मुझे हिलो फरमाइश आता है, वो भी बहुत पसंद है, और आज के कंचार और बम्बे टोकी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैडम हमको दीवाना कर गए का डायडसम
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662, यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 28670288, यानी 28670288। और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
2: स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदककर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं, पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है। जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि यही मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ, रौनक बनी रहती है, एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही, बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ आता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता, फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवेल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ, कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवेल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बंबई से।

अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहाँ सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था क्या रॉब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह,

यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड़ प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुखमुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। स्नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पाँव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला। एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था। वे घर में किसी से भी

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा, ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदल कर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको, या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया।

नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गरम करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गरम कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था, सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते, वो उपेक्षित सा महसूस करती। स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज़ है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें, और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा, और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आँख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियाँ संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है, निशान तो अपने

भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सेहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है पर हवा दिखाई नहीं देती, हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती, और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है, वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया, गुनगुना उठी।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organization has successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said that

0: समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
6: ध्यान दें आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक तो देर किस बात की आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा चिन्हित जारी
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है
7: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
8: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे
7: and recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में

0: ఆ పాటతో ఈనాటి మధురి గీతాలు సమాప్తం. ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు సమయం 11 గంటలు కావస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తలు, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే వింటారు.
1: ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ. हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं.
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई. यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है. अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं. श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी. प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे. इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है. ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है. नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं. उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है. श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं. नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है. नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है. बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा. उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें. श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी. वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वीं संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।